0: मुबारक हो, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन।
1: अरे भाई बधाई हो भाई, बहुत बहुत बधाई।
2: दोनों की जोड़ी।
1: अरे यार, ये भी यार,
2: विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ।
1: यार गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट कपल इन आवर ऑफिस।
2: बेटा ये पूजा का कुमकुम है, बहू को सिंदूर लगा दो। लगा दो ना बेटे।
1: अरे लगाना यार,
0: लगाना।
1: अरे लगाया,
3: लगाया,
1: लगाया, लगाना,
3: लगा दो यार।

0: जी मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने कह दिया कुश्ती में भाग नहीं लेगी तो मतलब नहीं लेगी, बस बहुत हो गया।
1: अरे भाई इसमें क्या,
0: आप हमेशा ऐसे सपोर्ट करते हो, बहुत चला रही आपने, अब मेरी सुननी पड़ेगी आपको। बाबूजी के जाने के बाद अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, अब इस पर कोई बहस या चर्चा नहीं होगी, समझ गई? तो शोभा नहीं देता, सुन रही है तू?
2: दीवार से बात नहीं करना, तुझसे बात करना, जवाब देगी मुझे? अब तेरे पास जवाब नहीं है ना?
3: सर जाने दो ना, बहन है आपकी।
0: बहन कमीनी है ये, मेरे नालायक बाप की बेशरम औलाद। बहुत शौक है ना तुझे चड्डी पहन के मर्दों के सामने अखाड़े में लड़ने का? एक बात कान खोल के सुन ले, जो तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो इसी अखाड़े में तुझे एक दिन काट दूंगा मैं। खानदान का नाम बदनाम करने को निकली है बेशरम।
1: पिता अंदर कितना आ गए तुझे, की चल रहा है इधर?
0: बहन है मेरी,
1: तुम्हें पता नहीं है लेडीज लॉकर रूम है, चलो बाहर निकलो थोड़ी।
0: हां ठीक है, एक बात काट बांध ले, तेरे पास अब दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता घर को जाता है और दूसरा वो स्टेडियम, और जो तूने दूसरा रास्ता चुना ना तो घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। चलो
4: अरे अरे अरे अरे अरे लड़कियां रोती नहीं है बेटे, जब भी कोई मुश्किल आए ना उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, बाहर जाओ और लड़ो, डटकर मुकाबला करो, जाओ।
5: Aditi Singh from Punjab and Pinto Fernandez from Delhi.
6: Punjabi! Punjabi!
7: नहीं नहीं चार ऐसे कैसे हो सकते हैं चार? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं कर सकते।
5: It has been a brilliant, brilliant display of wrestling in round one. And now round two starts, 8 points in the lead. Wrestler, but she needs to calm down her nerves in tense situations.

0: मैं तेनु बहुत प्यार करता हाँ, मैं तेनु बहुत प्यार करता हाँ, मैं तेनु बहुत प्यार करता हाँ, मैं तेनु बहुत प्यार करता हाँ। शारीगमरी कुकड़ू,
1: चलो मैंने कहा ना चलो, नहीं बहुत हो गया
2: भैया, प्लीज
1: मैं कुछ नहीं सुनने वाला,
2: मेरा लास्ट मैच है, प्लीज
1: कोई लास्ट मैच मैंने कहा ना नहीं।
3: हेलो हेलो, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग सर, व्हाट्स हैपनिंग,
0: कौन है तू? आई एम हर फ्रेंड, हु आर यू?
1: मैं इसका भाई हूं और ये फैमिली मैटर है, बीच में नहीं बोलेगा तू?
3: आई नो व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन यू टू, ओके?
1: क्या पता,
3: यू कैन नॉट टेक हर विदाउट हर परमिशन।
1: मुझे तेरे से परमिशन लेना पड़ेगा, तेरे से परमिशन लेना पड़ेगा।
3: मुझे विद मी,
1: मेरी बहन है, मैं चाहे वो करूं, तुझे क्या करना है उससे? तुझे क्या करना है पूछ रहा हूं मैं?
3: तू लड़के दे,
1: मेरे पे हाथ उठाता है तू?
2: भैया प्लीज, भैया
1: मुझ पे हाथ उठाता है, तेरी टांग तोड़ दी मैंने अब, एक पुलिस वाली को पर हाथ उठाता है तू?
2: भैया प्लीज,
1: तेरी चमड़ी उतार दी है मैंने, मुझ पे हाथ उठाएगा?
2: मेरे पे हाथ उठाएगा तू?
1: मार इसको,
2: छोड़ दो,
1: मार इसको, डंडा मार,
4: I'm so sorry for everything, yaar. Really, I mean it.
3: It's okay.
4: I have to leave now. Otherwise, it'll get worse.
1: Jaldi chal.
4: I don't know if I'll see you again, but thank you so much for everything.

0: have you done? He's just not my brother. He's a Punjab police officer.
1: Sir, खड़े होने की
2: कोशिश। नहीं छोडूंगा।
0: दास। दास, leave.
1: इधर लकी जानी तोड़े।
0: Go.
1: थोड़ा खड़े हो।
0: I said go.

0: मुझे पता है तुम कहां और किसके साथ हो।
1: तुम उसी साले के साथ हो ना जिसने मुझे सबके सामने मारा था।
0: अब तुम खुद वापस आओगे या फिर
2: नकने नहींगी बाड़ा
3: अंग पंजाब लोलने का
2: उशर ला अमले रे केरल तले ने जान कांच दरा नी वा
1: कौन बोल रहा है मद्रासी हां और क्या बकबक कर रहा है।